0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नादान दिल। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: Bollywood.

0: It's the 16th of September, Wednesday. This is The Big Breakfast with me, Sid.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: क्या है खास आज के दिन में? Of course, the weather is getting a bit better, right? नजर ना लगे. It's one of those cusp seasons जब पता नहीं चलता गर्मी कब थोड़ी सी सर्दी. एसी चालू करें नहीं करें is the question. नहीं, एसी तो चालू करो लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? That is a big debate that's going on in at least my house. I don't know about yours. But talking about the weather, it's International Day for the Preservation of the Ozone Layer. School से हम लोग सीखते आ रहे हैं यार कि ये जो ओजोन लेयर है कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है. आर वी डूइंग अ गुड जॉब, बैड जॉब? ये सारा का सारा एक खुला चिट्ठा आपको जरूर मिलेगा आपके सोशल मीडिया फीड पे. आज आई एम 100% श्योर. और क्या क्या खास है आज, क्या क्या हो रहा है, सबके बारे में बात करेंगे. लेकिन पहले थोड़ी गाड़ी तो गर्म कर लें. और कैसे करते हैं? रोज सुबह द फर्स्ट आवर ऑफ द शो इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आवर. कौन सा वो गाना है दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग? लेट मी नो. सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन 0543091062. तेरा मेरा रिश्ता, इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट राइट हियर ऑन बिग. अवारापन 2 का ये गाना कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's 7:24 on the clock. लग रहा है कि it's better weather, लेकिन you know, be prepared for you know, some heat that's coming your way, and also when this mix of hot and cold happens, the result, science के बच्चों, हाँ, काफी ज़्यादा fog भी आप expect कर सकते हैं in the coming days. That's what the NCM has said. Right now, 31 degrees, highs of 36, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सेड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।

0: I'm a bit speechless right now, a bit breathless because I've just seen the highlights package Sanju Samson ki kal sham ki innings ki.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: दिल चाहता है मैं एक डायलॉग था ना आमिर खान का, परफेक्शन को इम्प्रूव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसा वाला सिचुएशन. इफ यू जस्ट नीड टू अनवाइंड एंड इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, इवन इफ यू आर नॉट, जस्ट टाइप आउट संजू सैमसन इनिंग्स फ्रॉम लास्ट इवनिंग ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड दिस अमेजिंग पैकेज ऑफ शॉट्स व्हिच इज परफेक्शन, राइट? एंड दिस इज एंटायर नैरेटिव जो कि चल गया आजकल के, वैभव सूर्यवंशी को लें, संजू सैमसन को लें, कितना बड़ा एक इनजस्टिस हैज बीन डन टू वैभव सूर्यवंशी क्योंकि उसको अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाया एटसेट्रा. एंड देन संजू सैमसन कम्स एंड प्लेज द इनिंग्स दैट लिटरली शट्स एवरीबडी अप. इट इज क्वाइट इनक्रेडिबल यार. आई मीन जितनी तारीफ करो उतनी कम. जब वो चलते हैं तो क्या चलते हैं यार संजू सैमसन. होप कि वो ऐसे ही चलते रहे. इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ. कल 159/8 अफगानिस्तान स्कोर्ड इन देयर 20 ओवर्स एंड देन इंडिया चेज्ड इट डाउन विद मोर देन 5 ओवर्स टू स्पेयर. संजू सैमसन स्कोरिंग 57 एंड अभिषेक शर्मा ऑल्सो 39, ईशान किशन 38, जसप्रीत बुमराह सरप्राइजिंगली इज बीन प्लेइंग इन दिस सीरीज. या अर्शदीप सिंह टुक 2 विकेट्स, बुमराह 1, एनके रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी ऑल्सो टुक 3 विकेट्स फॉर इंडिया. सो दे काइंड ऑफ रैप्ड अप द सीरीज आउट द. एक और गेम अभी बचा हुआ है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. हियर इज तनिष्क बागची विद आफत ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. गुड मॉर्निंग.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक।
1: गुड मॉर्निंग, 8:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Authentic, original, and better than our rivals.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And great news coming out for today, the 16th of September, Wednesday, is the fact that the J1 card is actually going international. आप जानते हैं UAE का सबसे पहला नेशनल डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट स्कीम J1 में कुछ बहुत ही अमेजिंग चीजें हो रही हैं. लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर यू टू गेट दैट कार्ड एज वेल. द बिग वन इज दैट एमिरेट्स पे यू कैन गेट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 16th ऑफ सितंबर सम डिस्काउंट्स. अच्छे खासे डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं ऑन एमिरेट्स एंड इट अप्लाइज टू एलिजिबल वन वे एंड रिटर्न फ्लाइट्स अक्रॉस ऑल कैबिन क्लासेस. ये 31st August नेक्स्ट ईयर तक आप बुक कीजिए एंड यू कैन ट्रैवल टिल द एंड ऑफ Feb 2028. सो इट्स क्वाइट कूल. सो गेट चीपर फ्लाइट्स विद J1 कार्ड. ऑल्सो इट्स एप्लीकेबल on all category of cards. Yani ki sirf top category ke cards pe ye discounts aapko milte hain. Sunte hain ki Etihad is also going to join very soon, up to 10% off out there. Trip.com is also having a deal, and then like I said, it's going global as well. 183 countries and regions mein it's going to be accessible, and planned access includes more than 100 million points of sale and 1.8 million ATMs. So, aap bataiye, when are you getting your J1 card? Go just head out to the participating banks, I believe, and check out the eligibility, and it's as simple as that. Zyada koi mehnat mashakkat ki baat nahi hai. This is The Big Breakfast with me, Sid, coming up in just a while.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: जर्मन नॉलेज आपकी कैसी है, ये हम लोग टेस्ट करने वाले हैं. जी के स्टैंड्स फॉर जर्मन नॉलेज दिस एंटायर वीक. एंड अगर आपने एक बहुत ही आसान से सवाल का जवाब दे दिया अबाउट द कंट्री वे यू हैव अ चांस टू फ्लाई फॉर फ्री विद टीम बिग, देन यू गेट वन स्टेप क्लोजर विनिंग दिस वंडरफुल ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम. बिग चेक इन स्पेस से अगर अपना नाम आपको व्हाट्सएप करते रहना है 0543091062. समझदारी इसी में है. क्या करना है? बिग चेक इन स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप इट टू 0543091062. जस्ट अबाउट half an hour to go for German knowledge contest.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Right, what is this Meta One? Meta One की बातें हर कोई कर रहा है आज सुबह, and it is available in the UAE. More information about that coming up in just a while on the Big Breakfast with me, Sid. And the show is brought to you by Papa John's and UAE. Serious pizza question आपसे पूछ रहा हूँ. Are you ready for a new standard for pan pizza? Papa John's just launched its new pan pizza, and this one is loaded with a crispy garlic parmesan crust, edge-to-edge toppings, Italian seasoning, a soft, fluffy pan-baked बेस एंड 360 डिग्री चीज़ी गुडनेस. बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ जाता है. एंड व्हेन वी से 360 डिग्री चीज, वी मीन इट. चीज ऑन टॉप, अराउंड द साइड्स एंड एट द बेस, विद सिक्स चीज ब्लेंड्स लेयर्ड ऑल अराउंड. मोर क्रंच, मोर चीज, मोर टॉपिंग्स इन एवरी सिंगल बाइट. दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड फॉर पैन पिज्जा. ट्राई द पापा जॉन्स न्यू पैन पिज्जा टुडे एट अ पापा जॉन्स नियर यू, और ऑर्डर ऑनलाइन. पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड मॉर्निंग, 9:08।
2: बॉलीवुड

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: I've got Sana with me on the phone line. Good morning, Sana. How are you doing?
2: Good morning. I'm good. How are you?
1: Very, very good. Lekin Sana is in customer service. I want you to imagine that I am one of the people that you've called and kaise mujhse baat kar rahi hai, batao. Chalo, let's start that conversation.
2: Okay. So you start the call in.
1: Achha, I have to call you. You have to call me.
2: You have to call him.
1: Achha, I have to call you.
2: Yeah.
1: Achha, train.
2: Hi. Hi. Who's this?
1: This is Sid from Big 106.2.
2: Hi, you're calling Big 106.2 customer service. How may I assist you?
1: अच्छा ये उल्टा वाला है कि मेरे को लगा आप कॉल करते हो लोगों को. नहीं नहीं लोग आपको कॉल करते हैं.
2: अरे अभी कोल्ड कॉलिंग का जमाना नहीं है.
1: नहीं है जमाना. आई थॉट कोल्ड कॉलिंग इज बैक इन फैशन.
2: नो नो नो. एवरीथिंग इज ऑन डू नॉट डिस्टर्ब. पीपल नंबर्स आर ऑन डू नॉट डिस्टर्ब.
1: अच्छा बहुत मुश्किल हो गई है मतलब आपके आपके लाइन में तो है.
2: यस
1: चलो yeah. सना एक काम करते हैं. कोल्ड कॉलिंग का जमाना नहीं है लेकिन द हॉटेस्ट कॉन्टेस्ट ऑन द रेडियो राइट नाउ वी गोना बी प्लेइंग दैट विद यू. इट्स कॉल्ड द जीके व्हिच मींस जर्मन नॉलेज नॉट जनरल नॉलेज. ओके आई एम गोना आस्क यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू काइंड ऑफ चेक के वीजा के अलावा क्या क्या ऑल सेट है कि नहीं फॉर जर्मनी बिकॉज दिस इज दैट ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम. ओके
2: ओके
1: द क्वेश्चन इज आई एम गोना गिव यू 10 seconds टू आंसर दिस ऑल्सो. आर यू रेडी?
2: रेडी.
1: ओके 10 सेकंड आपके पास हैं टू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट जर्मनी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मुझे बताइए कि जर्मनी में द हाई स्पीड हाईवेज आर वेरी वेरी फेमस. दे've गॉट नो जनरल स्पीड लिमिट फॉर कार्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? ऑप्शन ए द ऑटोबान, ऑप्शन बी रूट 66 या सी द एक्सप्रेस वे.
2: ऑटोबान.
1: ऑटोबान इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कांग्रेचुलेशन. आपका नाम चला गया ड्रॉ के अंदर. आप बताओ कि कैसा लग रहा है, कितनी जरूरत है इस वेकेशन की और अगर आप जीत गए, अगर आपका नाम ड्रॉ में से निकला तो कितनी एक्साइटमेंट होगी?
2: बहुत ज्यादा बिकॉज़ आई हैव बीन डाइंग टू गो ऑन अ वेकेशन. आई हैव लीव स्पेंडिंग फॉर द होल ईयर.
1: वाओ
2: आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. यस
1: मतलब हम तो आपको ले जाएंगे कुछ 4-5 दिन के लिए. बाकी क्या एक्सटेंड करने का इरादा है?
2: नहीं लास्ट क्वार्टर है, कुछ ना कुछ आ जाएगा. देयर इज अ लॉन्ग वीकेंड फॉर द नेशनल डे एज वेल.
1: या सम पीपल डू दैट बाय द वे. सम पीपल डू दैट. यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू दैट. यू कैन जस्ट चूज टू स्टे बैक एंड एंजॉय जर्मनी फॉर अदर कपल ऑफ वीक्स व्हाटएवर. इतनी सारी छुट्टियां जो आपकी जमा हुई हुई हैं. नो टेंशन एट ऑल. बट फिलहाल के लिए सना योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ एंड ऑल द बेस्ट फॉर व्हेन दैट हैपेंस. कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. अगर आपका नाम ड्रॉ में से निकला आपको पता है क्या होगा. यू गोना विन दैट मच डिजर्वड फ्री ट्रिप टू जर्मनी विद Team Big. All right.
2: Inshallah. Thank you. Looking Thank you. Forward.
1: Thank you so much for taking part in our contest. Have a wonderful, wonderful day. That is Sana, हमारी आज की विनर, आज की draw entrant है. आप भी मैसेज करते रहो, WhatsApp करते रहो, Big Check-In space देकर अपना नाम. That's what you got to type. Big Check-In space your name and WhatsApp it to 054-309-1062.
0: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. This Navratri, experience the festive souk exhibition on 26 September from 10 a.m. to 10 p.m. at Almas Conference Center, right next to DMCC Metro Station. Shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, jewelry, home decor, and more. Kids activities, exciting competitions, the UAE's Got Talent Season 8 Grand Finale, plus chances to win staycations and dinner vouchers. Entry and parking free. Brought to you by Kids R Us with Divalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels. Event made last. अजवाई बिग 106.2 अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू 100% डिजिटल प्रोसेस मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: Tum kar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते
2: मैंने पूछा था कि अगर आपने 80s वाला ट्रेंड फॉलो किया है या नहीं किया है मोहित यस मोहित बताइए
3: नहीं मैंने फॉलो नहीं किया वो ट्रेंड को
2: वाओ हैट्स ऑफ मतलब ये कोई मिलियन में से एक इंसान निकलता है जिसने फॉलो नहीं किया है
3: क्योंकि हमको पता ही नहीं 80s में हम क्या कर रहे थे बॉर्न हमारा 92 का हमको पता ही नहीं 80s में क्या कौन सी क्या थे वही पता नहीं है हमको एक चीज है अगर इसमें कुछ ऐसा होता ना कि हम 80s में जाके कुछ कर सकते थे तो हाँ थोड़ा सा गोल्ड या कुछ जमीन वमीन खरीद के वापस
2: Oh my God, मैंने भी exact same चीज कहा था कि अगर 80s trend में वापस जाना ही है तो फिर मैं यार 1,000 bucks की मैं लैंड खरीद लेती हूँ
3: कुछ ना कुछ लेके आते तो इधर जाके 5-10 मिनट में खरीद के वो सब करके वापस आते तो इधर अभी हम लोग कुछ ना कुछ तो होते तो पढ़ाई कर लेते तो शायद कुछ बन जाते कुछ कर जाते तो हम भी अपने बच्चे को बोलते कि भाई मैंने ये जमाने में ये पास किया था तुम अभी कुछ नहीं कर रहे
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: शुरुआत करते हैं आज D89 से. That is the airport road going towards Dera heading west. You'll find 6 से 8 मिनट की देर. Then there is the usual 311-11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries, you'll face around 10 to 11 minutes ka delay. Things are looking much, much better at safe zone E88. Par aaj subah se kaafi traffic tha. Ab 4 se 5 minute ka reh gaya and this is heading in the direction of Sharjah International Airport. E11 par abhi bhi thoda bahut congestion hai and this is Ajman South heading towards the junction of E88. In case aapko kuch dikhta hai, and with safe recall, call me on 800-1062.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Jasmine Sandler with Lavan right here on Big 106.2. This is the Big Breakfast. Ever notice ke sab kuch aajkal premium hota ja raha hai? So why should Meta be far behind?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Yeah, everybody's talking about Meta One. Meta ne officially roll out kiya hai the new subscription service right here in the UAE. It is called Meta One. लेकिन यार मतलब इसमें काफी सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी ही बिफोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें है क्या. व्हाई शुड आई स्पेंड दिस एक्स्ट्रा मनी. योर बेसिक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, दे आर ऑल स्टिल कंप्लीटली फ्री. तो एक लंबी सी राहत के साथ सबसे पहले तो भरो, ऐसा नहीं है कि आपको अब पैसे देने पड़ेंगे फॉर दीज फ्री एयरपोर्ट एप्स. You do not have to pay for a message to your friends. लेकिन Meta One क्या है? Meta One is like buying a VIP upgrade for your phone. So मतलब जैसे कहीं पर आप concert में जाते हैं, so it's like kind of skip the queue, you get like a better seat. So it's that kind of a fun life. You pay a few dirhams a month, कुछ cool perks. आपको cool लगे ना लगे, कुछ perks आपको मिलेंगे, जैसे कि custom chat themes, hidden privacy settings, preview messages without people knowing, and smarter AI tools as well. So जो AI packages होते हैं उस पर ज़्यादा limit आपको मिल सकती है. You can generate more photos using the same amount of credits. So blue verification tick के लिए आप already extra पैसे अगर आप दे रहे थे तो क्या इसमें included होगा? नहीं, not in the basic ones, but there is an entire bundle which costs I think around some 47 dirhams a month, जिसमें कि ये सारा कुछ of that Meta One plus the verification tick also you get. So it's that higher business plan. So basically, in a nutshell, keep using it for free. Instagram, WhatsApp, Facebook, अगर आप if you're happy, या फिर you can pay a little extra to unlock the premium toolbox. What do you think? Is it worth it? Is it not? One of those things is कि वो जो Instagram पे जो Instagram है उसका font आप customize कर सकते हैं. You can have like a customized, you know, theme to your chats also. हर एक DM को, हर एक person, हर एक profile के साथ जो आप chat कर रहे हैं, that can have its own kind of customized look to it. What do you think? I'm going to do a poll.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:08।
1: बॉलीवुड।

0: और अगर आपको ताली देनी है इन सेलिब्रेशन, इफ यू आर रियली हैप्पी, देन यू हैव टू गो थ्रू द चीफ सेलिब्रेशन ऑफिसर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: क्या है यार, सीटीओ, सीबीओ, सीईओ, सीएक्सओ के बाद अब सीसीओ, व्हिच इज द चीफ सेलिब्रेशन ऑफिसर. एंड या आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएई लॉटरी. आई हर्ड अबाउट दिस, आई लव्ड द जॉब डिस्क्रिप्शन. या चीफ सेलिब्रेशन ऑफिसर यूएई लॉटरी ने सिलेक्ट किया है एक बहुत ही फेमिलियर नेम को. इफ यू आर अ मिलेनियल, यू ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज दिस वॉइस. इट इज नन अदर देन ब्रेट ली. ब्रेट ली हैज बीन नेम्ड चीफ सेलिब्रेशन ऑफिसर ऑफ द यूएई लॉटरी. एंड क्या होगा, ही इज गोना डायरेक्ट के हाउ पीपल विल सेलिब्रेट आफ्टर विनिंग द यूएई लॉटरी. नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट द केस इज. ऑल्दो इट वुड मेक सेंस बिकॉज ऑस्ट्रेलियन से अच्छा सेलिब्रेशन और कौन जानता है यार. लेकिन व्हाट ही इज गोना डू इज ही इज गोना बी डूइंग विनर एंगेजमेंट, कम्युनिटी एक्टिवेशंस एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन. का जो मैसेज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोना बी कन्वेड थ्रू अ लेजेंडरी फिगर लाइक ब्रेट ली. सो इट ऑल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? प्लस जब कोई ये बड़े बड़े प्राइजेस जीतेगा तो उसका जो फैन एंगेजमेंट होगा, लॉट्स ऑफ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एज वेल, एंड देन टॉकिंग टू द विनर्स, आस्किंग देम हाउ दे प्लान टू एक्चुअली इन्वेस्ट दैट मनी, एंड क्या है उनके होप्स एंड ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस जो कि पूरे हो गए बाय विनिंग दैट प्राइज, देयर एक्सपीरियंसेस, इंटरव्यूज एंड ऑल दैट कॉन्टेंट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड ऑल थ्रू ब्रेट ली. सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. आप जानते हैं यूएई लॉटरी इज ऑपरेटेड बाय द गेम LLC एंड इट्स regulated by the General Commercial Gaming Regulatory Authority here in the UAE, and it is only applicable for 18 plus out here in the UAE. Oye Oye ka Rang De Lal version from Dhurandhar coming up in just a while. मैं हूं आपके सुबह का चीफ सेलिब्रेशन ऑफिसर. मेरा नाम है सिद्ध. शो इज कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, फटफटाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट, झुलबुलाहट,

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply.
1: The festive season is here. Navratri just around the corner, भाई जब इतने सारे festival एक साथ आ रहे हो तो shopping कहाँ पर करें, खरीदारी करनी है, लेकिन what if you found everything under one roof? That's exactly what's going to happen. This Navratri experience, the festive souk exhibition on the 26th of September. आज से 10 दिन बाद ठीक, from सुबह के 10 से लेकर रात के 10, Almas Conference Center, right outside GLT Metro Station. 45 से भी ज़्यादा exhibitors all going to be featuring festive fashion, saris, jewelry, होम डेकोर से लेकर खाना पीना और बहुत कुछ. किड्स एक्टिविटीज भी वहां पर होंगी, एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स, एंड यूएई गॉट टैलेंट सीजन 8 का ग्रैंड फिनाले, प्लस चांसेस टू विन स्टेकेशंस एंड डिनर वाउचर्स. एंट्री इज फ्री एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पार्किंग इज ऑल्सो फ्री. ब्रॉट टू यू बाय किड्स आर अस विद डीवेलिशियस ब्यूटी सैलॉन, ज्वेलरी पार्टनर बियानी ज्वेल्स, इवेंट मेड लार्ज बाय बिग 106.2. तो फिर जाओ

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: राइट इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए, लेकिन जाते जाते आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कह के जा रहा हूँ। गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव रेंट कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099, सिर्फ 1099 दिरहम्स अ मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स। ऑन दैट नोट, आई एम गोइंग टू बी टेकिंग योर लीव एंड जॉइन यू टुमारो मॉर्निंग। आप जानते हैं द वे टू वेक अप is with the big breakfast. Breakfast ho to big ho, varna na ho. 7 to 11 on a weekday from Monday to Friday. That's the show for you to recharge your batteries on your way to work. In the meanwhile, follow me on socials. I'm Sid Seth, SIDSETH. And of course, 106.2 Big FM ko to aap follow karte hi honge. Nahi karte to bhai, you're missing out on quite a lot, including the chance to win couple open movie tickets. Aaj Big Filmy Wednesday ka video is out right now. Kuch minuton pehle the Big Filmy Wednesday ka video is on. Answer a very simple question, leave a comment, right, and you could win open movie tickets. Saath mein a chance to win a trip to Germany, fly with Team Big. So it's all happening on our Insta page, 106.2 Big FM. I'm going to take your leave now and leave you to enjoy the rest of your Wednesday. Till tomorrow, bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: Big 106.2. That's my song.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Big Unlimited, Unlimited, the biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
1: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लड़ेगा?
2: यूं ही यहीं? चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:06
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: It's 36 degrees out there, but it actually feels like 45 because humid levels are filhaal 50% pe chal rahe hain.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: Anyone can sell insurance when everything's fine. What matters is who shows up when it isn't. InsuranceMarket.ae. Here when it matters. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. एंड फिल्मों की इतनी बात करते हैं हम कि फिल्म कंपटीशन लॉन्च हो चुका है एंड क्रिएटर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्पेशली यार दुबई में इतनी बड़ी क्रिएटर कम्युनिटी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. दिस इज एक्चुअली योर चांस. द कॉम्पिटिशन हैज बिन लॉन्च बाय दुबई फिल्म एंड गेम्स कमीशन, जहाँ पर हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है. इमराती फिल्म मेकर्स हो गए, UAE बेस्ड क्रिएटर्स ऑफ एनी नेशनलिटी, स्टूडेंट्स, इमर्जिंग एंड फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स एंड इवन प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स. हर तरह के फॉर्मेट इंक्लूडेड हैं. फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, एक्सपेरिमेंटल फिल्मिंग, इनफैक्ट AI जनरेटेड या फिर AI असिस्टेड फिल्म्स भी. एंड इसको जीतने के बाद यू कैन एक्चुअली विन 50,000 धिरम्स तक के प्राइजेस. आई एम नॉट इवन किडिंग यार, देख लो किस्मत एक बार.
3: किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलता वेखिया.
2: किस्मत और जग दोनों बदल जाएंगे अगर आपने इस फिल्म कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लिया. क्रिएटर्स, दिस इज अ वेरी वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. देखती हूँ यार, मतलब मुझसे तो मैक्सिमम रील्स बनती हैं, बट लेट्स सी क्या हो सकता है. यू कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज। अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! खुश हुआ।
5: हाय इशिता।
6: हाय मानसी।
5: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
6: पेरिस।
5: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है। क्या करते हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा?
6: आई एम अ होममेकर फुल टाइम।
5: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
6: थैंक यू सो मच।
5: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका, पापा के साथ रहेंगे?
6: दोनों
5: बालिका है। अच्छा, रहेंगे पापा के साथ?
6: यस यस।
5: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन कराया पापा को इशिता ने। लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं। लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
6: सेकेंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट।
5: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
6: गोल्डन गेट इंडिया में ही है शायद।
5: ये बहुत ज्यादा
6: सेकेंड ऑप्शन ही है।
5: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही है गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है। आपके घर का गेट तो नहीं है?
6: नहीं।
5: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट। Congratulations! You're one step away for this check-in to Germany.
7: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: This patchy traffic around business bay, Dubai Design District, E311 par aapko Discovery Gardens wali side par congestion mil jayega. With that, D61, it's slower movement on Jumeirah Village Circle. Towards Sharjah, agar aap ja rahe ho, it's heavy traffic on Al Ittihad Road. Dubai Marina, JLT and Motor City, comparatively slower traffic. Kahin aur phase ho, let me know. Call karke 800-1062 par.
7: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
9: Ek aisi ladki jise dekhte hi dil ki har arzu, sare khwab, sare rang zinda ho jaye.
7: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: प्यास है।
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। This is the Big Mix and turns out your brain can actually hit the gym too. Researchers suggest कि अगर आप exercise visualize कर रहे हो ना, that will also help you maintain muscle strength. क्या के वो what? नहीं करना पड़ेगा आपके, ये नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? A 2026 Totem article highlights research from Ohio University जो बताता है that mentally visualizing exercise can help maintain muscle strength. But this does not mean कि आप जिम नहीं जाओगे, लेग डे के बारे में सोचोगे तो बस लेग डे हो जाएगा. It cannot replace cardio movement या फिर other physical exercise. लेकिन it activates neural pathways involved in muscle control जो आपके ब्रेन को हेल्प करता है टू कनेक्ट विद द मसल्स. एंड दिस इज फॉर पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी, ओल्डर एडल्ट्स या फिर जो टेम्परेरली मूव नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अगर आपको लगता है आप जिम स्किप कर सकते हो और सिर्फ सोच सोच के ओ ये कब होगा यार, मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए हम जाते हैं ट्रैक पर. ट्रैक पर जाकर पता लगता है कि हमें तो फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है. हैविंग सेड दैट, इस जवानी में इश्क कर लो यार, लेकिन घूमने फिरने से. बिग चेक इनटू जर्मनी कमिंग योर वे. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आलू ट्रैक बाय मोनाली ठाकुर एंड सवर्ने का मन यार स्कूल में आता था जब हम बचपन में एकदम मम्मा स्लीक हेयर स्टाइल करते थे, टाई ऑन पॉइंट, बेल्ट ऑन पॉइंट. उसके बाद तो यार एडल्टहुड आ गया.
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और आपके बच्चे भी एकदम सवर के स्मूथ राइड पर स्कूल जा सकते हैं. नाउ यू कैन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न. सो बेसिकली स्कूल सवर के जाना हो सकता है, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर इन माई टीनेज डेज हम पफ करके जाते थे एंड काजल हल्का सा लगाया हुआ है, लिप बाम लगा रखी है, हर इरा की यार अलग अलग फैशन ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन ये सब स्कूल में अलाउड नहीं है. बाय द वे अलाउड नहीं करके नहीं जाना है. यू टेल मी, कॉल करके 800-1062 पे, व्हाट हैज बीन योर मेमोरीज विद स्कूल एंड फैशन. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: That sound changes everything. When something goes wrong, insurancemarket.ae is there for your claim. Great car insurance, great support. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. एंड वेंसडे को अगर आपको ट्रिप प्लान करने का मौका मिले, सॉरी प्लान भी नहीं, आपको सिर्फ खुद को रजिस्टर करना है. प्लान हम कर रहे हैं, दिस इज ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप. करना क्या है, टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. और ये करने के बाद रैंडमाइजर जो भी नाम पिक करेगा, आई विल गिव हिम कॉल. जीके का सवाल खेलेंगे, जनरल नॉलेज नहीं, हम जर्मन नॉलेज खेलने वाले हैं.
3: सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू,
2: होता है ना ये फील, लग रहा है ना वेकेशन मोड चाहिए, एक वेकेशन चाहिए ही चाहिए. बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड भेजो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज मैंने कॉल किया है रुचिका को. हाय रुचिका.
2: हाय हाय.
1: क्या करते हो रुचिका?
2: एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ.
1: ओके एंड इफ आई आस्क यू आपको वेकेशन क्यों चाहिए?
2: बिकॉज मेरे ट्विन्स किड्स हैं तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए.
1: हम अपने इनर चाइल्ड को नहीं संभाल पा रहे हैं. आपने ओह माय गॉड ट्विन्स. हाउ डू यू मैनेज?
2: आई मैनेज ऑल अलोन.
1: तो फिर आप वेकेशन पे कैसे जाओगे?
2: नाना नानी जिंदाबाद.
1: ये तो बढ़िया तोड़ निकाला रुचिका. अच्छा अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम के आ चुके हैं एंड व्हाई जर्मनी?
2: एक्चुअली मैं गई हूँ, यूएस भी जा चुकी हूँ और स्विट्जरलैंड गई हूँ, पेरिस भी गई हूँ, इटली भी गई हूँ, लेकिन विद किड्स अलोन नहीं गई हूँ.
1: मैं समझ गई हूँ रुचिका भी लाइक कि मैं इतना घूम चुकी हूँ कि मेरे में वो घूमने का कीड़ा आ चुका है. आई जस्ट कैन नॉट मिस जर्मनी है ना. Oh God, what a sweet. हाँ, मुझे अभी जाना है, अभी लेके जाओ. Let's check it out. अगर आपका नाम आज रजिस्टर होता है, we're gonna play GK with you. Not the general knowledge question. It's going to be a German knowledge question. Are you ready?
2: Sure.
1: Okay. What is the most popular sport played and watched in Germany? Your options are A. Cricket, B. Football, or C. Basketball.
2: It is football.
1: Football, पक्का?
2: हाँ.
1: I mean, देख लो फिर भी आप यूएस गए हो, यूएस में कौन सा था?
2: यूएस में एक्चुअली मुझे जनरल नॉलेज इतना तो नहीं है.
1: बट द गुड पार्ट इज दिस वाज नॉट अ जनरल क्वेश्चन, इट वाज अ जर्मन क्वेश्चन एंड यू वन इट. जीत गए हो. पर अपना नाम रजिस्टर हो चुका है. जर्मनी जाते हो बिग चेक इन के साथ कि नहीं ये अभी नहीं पता है, बट आर यू एक्साइटेड?
2: Very, very, very. Thank you for calling. I was so waiting for it.
1: So sweet. अपना OTD जरा ready करके मुझे जरा भेजना, फिर मैं भी थोड़ा inspire हो जाऊंगी. Thank you so much, Ruchika.
2: Thank you.
1: Okay, bye. If you also want to participate in Big Check into Germany, message karo 0543091062 WhatsApp number par. Likho Big Check in, space your name, and bus. Let's see, kaun chalta hai Big Check into Germany.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Early in the morning,
2: the Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's.
6: Hey, जल्दी उठा, तेरा खटा ना, चल हटा।
7: हाँ,
6: अरे जल्दी उठा, सुन ना।
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: E44 पर अलखियल रोड पर अगर आप हो तो आपको काफी कंजेशन मिलेगा अराउंड बिजनेस बे, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेच। E311 पर भी पैची ट्रैफिक है, स्पेशली टुवर्ड्स गोइंग अप टू शारजा। दुबई मरीना, जीएलटी एंड मोटर सिटी कंपैरेटिवली देयर इज लाइटर ट्रैफिक। कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big.

0: तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अब नहीं रुलेगी यार, अब दुबई टू अबू धाबी आप सिर्फ 30 मिनट में पहुंचने वाले हो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग मिक्स एंड यूएई इज डेवलपिंग अ हाई स्पीड रेल लिंक बिटवीन दुबई एंड अबू धाबी जो आपकी जर्नी को सिर्फ 30 मिनट्स की कर देगा। द स्पीड ऑफ ट्रेन्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच अप टू 350 किलोमीटर पर आवर एंड दुबई स्टेशन जो है इंक्लूड होंगे अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अल जदफ। ये सर्विस जो है विल बी अ पार्ट ऑफ एतिहाद रेल नेटवर्क एंड एनुअली ये 21 मिलियन पैसेंजर्स कैरी कर सकती है, हैंडल कर सकती है। बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है दुबई टू अबू धाबी। अब बस 30 मिनट में पहुंच जाओगे एंड दैट वन थिंग वन फ्रेंड जो आपका अबू धाबी में रहता है वो बोलता है ना कि यार आओ आओ मिलने आओ, अब सजदा तो जाना ही पड़ेगा यार लेके। राहत फतेह अली खान का ट्रैक कमिंग अप योर वे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: टाइम चेक 3:06, 3 टिफिन खा चुकी हूँ आज। आपने अपने वाला खोला है अभी तक कि नहीं खोला है?
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: कमाल है भाई, कमाल है। 3 बज गए, आपने अभी तक लंच नहीं किया है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग मिक्स एंड 3 PM पीक लंच आवर टाइम निकल चुका है। अभी तक लंच नहीं किया तो एकदम तगड़े वाली भूख लग जाने वाली है विद दिस गेम। खाओ पियो ऐश करो। कॉल मी 800-1062 पर। मैं दूंगी आपको 2 डिशेस के नाम, उन दोनों में से आपको रैपिड फायर की तरह एक चूज करनी है। जो भी तेज जवाब देगा वो जीतेगा आज की ओपन मूवी टिकट्स। कॉल करना है मुझे 800-1062 पर। मैं तो 3 टिफिन खा चुकी हूँ, मेरा सॉर्टेड है यार, लेकिन ये वाली गेम खेलने के बाद ना अचानक से मुझे भी भूलनी शुरू हो जाती है। 800-1062 इज द फोन नंबर, इस पर कॉल करो। खाना खा चुकी हो तो फिर से भूख लग जाएगी, ये मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। 800-1062 इट इज। अंटिल देन कीप इट लॉक्स टू बिग 106.2।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: हाय इशिता।
4: हाय मानसी।
3: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
4: पेरिस।
3: एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है?
4: हाँ।
3: क्या करती हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा?
4: आई एम अ होममेकर फुल टाइम।
3: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
4: थैंक यू सो मच।
3: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका पापा के साथ रह लेंगे?
4: दोनों
3: बालिका है। अच्छा,
4: हाँ।
3: रह लेंगे पापा के साथ?
4: यस यस।
3: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने। लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं। लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
4: सेकेंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट।
3: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
4: गोल्डन गेट इंडिया में ही है शायद।
3: ये बहुत ज्यादा
4: सेकेंड ऑप्शन ही है।
3: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है। आपके घर का गेट तो नहीं है?
4: नहीं।
3: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट।
4: Thank you.
3: Congratulations.
4: So much.
3: You're one step away for this check into Germany.
1: Okay. Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
5: Yeah, तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
6: मुझे खुद का पता था यार। अगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: It's 36 degrees out there as of now, but it feels like 45 because humid levels जो हैं 50% पे चल रहे हैं। कहा जा रहा है, officially कह दिया गया है कि 23rd September 4:05 AM के बाद ये temperature और भी कम हो जाएगा। Until then, keep it locked to Big 106.2.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 pe main hu Avni aapke saath and let's see who's in the call. Hello.
2: Hello.
1: हाय, कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। अवनी, कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ हुज़ैफ़ा, आप कैसे हैं? खाना खा लिया आपने?
2: नहीं, अनफॉर्चुनेटली आज ही नहीं खाया है और आपका रेडियो सुन रहा था और मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग गई है।
1: भूख लग गई है, कोई बात नहीं, मैं आपसे सवाल पूछने लगी, आपकी भूख एकदम 200% बढ़ जाएगी। लेकिन आज के जो सवाल है वो सेवरी या फिर लंच डिशेज नहीं, वो स्वीट डिश होने वाली है। आर यू रेडी?
2: यस आई एम।
1: ओके, आपको मुझे बताना है कि आप गुलाब जामुन चूज करोगे या रसगुल्ला चूज करोगे?
2: गुलाब जामुन।
1: गुलाब जामुन या रसमलाई?
2: गुलाब जामुन।
1: गुलाब जामुन या जलेबी?
2: गुलाब जामुन।
1: गुलाब जामुन या बेसन के लड्डू?
2: गुलाब जामुन को कोई बीट नहीं कर सकता।
1: लेट्स सी, गुलाब जामुन या मोती चूर लड्डू?
2: गुलाब जामुन।
1: गुलाब जामुन या रबड़ी?
2: गुलाब जामुन अगेन।
1: गुलाब जामुन या श्रीखंड?
2: ओह, नाउ इट इज टफ। श्रीखंड।
1: श्रीखंड या बासुंदी?
2: श्रीखंड।
1: श्रीखंड या शाही टुकड़ा?
2: श्रीखंड।
1: ओके, श्रीखंड या कुल्फी?
2: श्रीखंड अगेन।
1: श्रीखंड या मोदक?
2: श्रीखंड।
1: ओके, आई गेस यू हैव वन दिस, वेरी नाइस। मुझे लगा था गुलाब जामुन के आगे नहीं जा पाओगे आप, बिल्कुल नहीं जा पाओगे।
2: श्रीखंड आई एम बिग फैन ऑफ इट, बिग फैन ऑफ।
1: फिर खिला कब रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, मोदक खाया आपने?
2: मोदक खाया है, बट आई एम अगेन नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मोदक या मोतीचूर। मेरी वाइफ को बहुत पसंद है मोतीचूर के लड्डू, बट मुझे इतना नहीं। कुल्फी, ये सब चीजें बहुत पसंद।
1: समझ गई, लेकिन पहले आप लंच कर लो यार, बहुत टाइम हो गया आपने लंच नहीं किया, उसके बाद आप इन चारों में से कुछ भी खा लेना। हुज़ैफ़ा जीतते हैं आज के ओपन मूवी टिकट वाउचर्स। अगर आपको भी ये गेम खेलनी है, मैसेज करो मुझे 0543091062 पर। अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं खुद परेशान हो गई थी यार इंस्टाग्राम पर ये चैलेंज देख देख कर, इसीलिए मैंने और मानसी ने ये चैलेंज कबूल कर ही लिया।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, this is The Big Mix. And अगर आप जाओ 106.2 Big FM Insta handle पर, वहाँ पर हमने एक रील पोस्ट करी है, where me and Mansi are playing Guess the Bollywood Actress. कसम से मजे आ जाएंगे। इतनी इजी गेम को भी हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर कैसे लिया, मतलब ये टैलेंट है भाई, हर कोई नहीं कर पाता है, एंड जीता कौन हम दोनों में से वो तो आपको देखना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्टर मेन कैरेक्टर से हट गए भाई, वो साइड गिग बन चुके थे। 106.2 बिग एफएम पर जाओ आप, वहां जाके वो रील चेक करो। अंडल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2 एंड नेक्स्ट चैलेंज उधर कमेंट कर देना, वहीं पे बताएंगे।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 37 डिग्रीज आउट देयर विद ह्यूमिड लेवल्स ऑन 48%, लेकिन वेदर फिलहाल जो है ना बीमारियों वाला हो रखा है। हर किसी को वायरल है, खांसी जुकाम है, इसलिए ध्यान रखो अपना।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग 106.2

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: खुल गए।
1: फिलहाल तो के ड्रामा लवर्स के लिए ये डोर्स खुल गए हैं।
2: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग मिक्स एंड मेरे हैं कुछ दोस्त यार हु आर लाइक बिग बिग बिग क्रेजी फैंस ऑफ के पॉप एंड के ड्रामाज। लेकिन अगर आप भी उनमें से एक हो, द के कल्चर इज टेकिंग ओवर दुबई दिस ऑटम। दुबई के फेस्टिवल 2026 की बात कर रही हूँ, विच इज गोइंग टू बी अ 10 डे सेलिब्रेशन फ्रॉम सितंबर 25th टू अक्टूबर 4th। Expect everything Korean, okay? Korean food, beauty, entertainment, lifestyle, K-pop and K-drama vibes all over the place. ये full program फिलहाल under wraps है कि अब होगा कहाँ पर होगा पता लगेगा, लेकिन Dubai is gonna get a whole lot more K-pop drama vibes. अगर आप भी K-pop culture fan हो तो आप भी यहाँ जा सकते हो, क्योंकि भाई कोई festival की बात हो Dubai के लोग वहाँ ना जाएं। मन तो खैर मेरा भी कर रहा है 25 सितंबर तक मैं कुछ कुछ कोरियन ड्रामास देख लेती हूँ। मे बी तब जाके वहाँ पे मैं यू नो वो कल्चर समझ पाऊंगी। लेट्स सी, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: यू आर लिसनिंग टू द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. और कोई भी हम वीडियो देखते हैं ना इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, द फर्स्ट थिंग जो जिस पे हम बहस कर रहे होते हैं होता है कि यार ये वीडियो फेक है, हाँ ये एआई वाली वीडियो है, नहीं नहीं ये रियल वीडियो है, इतनी अच्छी वीडियो है, ये पक्का ना डिजिटली बनी है, ये रियल वीडियो नहीं है. वेल दिस डिबेट अब ये खत्म होने वाली है. दैट वीडियो इज रियल और एआई. दुबई इज गेटिंग अ न्यू वेपन अगेंस्ट दोज डीप फेक्स. सराब एक ऐसा एआई मॉडल जो डिजाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए कि ये वीडियो फेक है या नहीं है. दिस कैन स्कैन एन एंटायर वीडियो एंड यूज अ हीट मैप टू शो विच पार्ट्स ऑफ अ फेस मे हैव बीन ऑल्टर्ड. ये एंड ऑफ दिस ईयर तक आ जाएगा एंड दिस हैज बीन रिपोर्टेड विद 91% एक्यूरेसी. देखो हम तो छोटी मोटी डिबेट कर रहे हैं यार कि ये वाली वीडियो ये वाली रील एआई है कि नहीं है, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ साइबर क्राइम जिसके लिए सराब कमिंग सून, वेरी वेरी सून. Next song from Dhurandhar coming up your way. Until then, keep it locked to Big 106.2.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: Majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: Missed your morning buzz?
2: Yes,
1: Suno.
3: Sana is in customer service. I want you to imagine that I am one of the people that you've called and kaise mujhse baat kar rahi hai, batao. Chalo, let's start that conversation.
4: So you start the call in.
3: Achha, I have to call you. You have to call me.
4: You have to call him.
3: Achha, I have to call you.
4: Yeah.
3: Achha, train.
4: Hi.
3: Hi,
4: who's this?
3: This is Sid from Big 106.2.
4: Hi, you're calling Big 106.2 customer service. How may I assist you?
3: अच्छा ये उल्टा वाला है कि मेरे को लगा आप कॉल करते हो लोगों को. नहीं नहीं, लोग आपको कॉल करते हैं.
4: अरे अभी कोल्ड कॉलिंग का जमाना नहीं है.
3: नहीं है जमाना? आई थॉट कोल्ड कॉलिंग इज बैक इन फैशन.
4: नो, एवरीथिंग इज ऑन डू नॉट डिस्टर्ब. पीपल्स नंबर्स आर ऑन डू नॉट डिस्टर्ब.
3: अच्छा बहुत मुश्किल हो गई है मतलब आपके आपके लाइन में तो है.
4: yes,
3: चलो
4: yes.
3: सना एक काम करते हैं. आई एम गोना आस्क यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू काइंड ऑफ चेक के वीजा के अलावा क्या क्या ऑल सेट है कि नहीं फॉर जर्मनी, बिकॉज दिस इज दैट ट्रिप फॉर लाइफ टाइम. ओके
4: ओके,
3: मुझे बताइए कि जर्मनी में द हाई स्पीड हाईवेज आर वेरी वेरी फेमस. देव गॉट नो जनरल स्पीड लिमिट फॉर कार्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? ऑप्शन ए द ऑटोबान, ऑप्शन बी रूट 66 या सी द एक्सप्रेस वे.
4: ऑटोबान
3: इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कांग्रेचुलेशंस. आपका नाम चला गया ड्रॉ के अंदर.
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Evening rush has started. अगर आप शेख जायद रोड पर हैं तो आपको बिजी ट्रैफिक मिलेगा अराउंड डाउनटाउन एंड बिजनेस वे. अलखेल रोड एंड इन E44 पर भी हैवी कंजेशन मिल सकता है अराउंड बिजनेस वे नादरशिबा वाली साइड. हेडिंग टुवर्ड्स JVC एंड डिस्कवरी गार्डन्स, यू हैव टू कीप एन आई ऑन E311 अगर आप शारजा वाली साइड जा रहे हैं. अलमजार पर भी पैची ट्रैफिक है. कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big.

0: Car, health, home, life, travels or business. Over 30,000 Google reviews and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ. This is the Big Mix and the song name was Dance Basanti. विशाल ददलानी का track and भाई dance कराता है भाई अच्छा खासा. Basanti को dance कराती है ये adult life, adulthood, क्योंकि बचपन से हम अपने inner child को संभालते संभालते तो थक गए हैं यार. लेकिन अगले आगे के सफरनामा के लिए आपको दिक्कत ना हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल चुकी है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज भी बहुत जरूरी है यार. इफ यू लुकिंग आउट फॉर अ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर मॉर्गेज, creditmarket.ae इज योर स्टॉप. स्टार्ट विद creditmarket.ae, दैट्स वन मोर वे अल्फ्रेड कैन हेल्प यू. कॉल करना है 800 अल्फ्रेड पर या फिर आप विजिट कर सकते हो creditmarket.ae की ऐप पर. Until then, keep it locked to Big 106.2. कल मिलती हूँ फिर से in the Big Mix 1 to 5.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 5:07।
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Two best friends, one dangerous mission, and chaos they never saw coming.
3: तुम दोनों हमारे लिए intel collect करोगे और इस mission का हिस्सा बनोगे.
2: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta, and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu.
4: This is the vibe.
5: God, please मुझे बचा लो.
6: God, please मुझे बचा लो. नास्तिक से आस्तिक बन गए.
2: Vibe, releasing 18 September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
7: School's starting soon and we need a car.
8: And books, uniforms, everything.
7: Don't worry. I found the best back to school rent a car offer on selfdrive.ae. Self drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
9: And what if we need it for a short while?
7: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
10: One big ticket brings many chances to win.
11: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
10: And 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
11: Buy now at bigticket.ae.
12: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
13: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
14: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: ऑनेस्टली आई एम अ पर्सन जिसे छोटी छोटी खुशियां बड़ी अच्छी लगती हैं। अब खुशी ये है कि 36 डिग्री है, लो जाएगा अराउंड 31। गुड वेदर इज ऑलमोस्ट हियर। आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक और टू वील हैव कूलर इवनिंग्स एंड दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि ये पहली सर्दियाँ होंगी यूए की जब मैं गाड़ी में गेड़ी मार सकती हूँ।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

ड्रीम है मेरा डुएट करने का ये गाना किसी के साथ। चलो आज आप ही के साथ डुएट गाते हैं। अगर आपने गाना पहचान लिया है देन लेट्स कैरियोकी टू दिस सॉन्ग। गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप 0543091062 पर। कैरियोकी

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: What I'm about to tell you, don't tell anyone.
4: Why are you whispering?
3: Because if everyone finds out about Papa John's new pan pizza, good luck getting one.
4: For pizza? Have you seen it? Cheese all around, edge-to-edge toppings, crispy garlic parmesan crust. My mouth just watered.
5: Try the new pan pizza today. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Honestly, मैंने अपनी दुबई लाइफ का सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस वीकेंड देखा, बट दुबई करामा मनखूल के पास। मुझे आज तक लगता था कि शारजा में गाड़ी चलाना टफ है, बट ये एरियाज भी बहुत रिक्सी हैं। फिलहाल काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक अगर आप शेख जायद पे हैं। राइट नाउ 42 मिनट डिले, हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद, मोरिफ टू मुहेसना 1 घंटा 4 मिनट का डिले है। अलकूस के अगर आस पास है वहाँ ट्रैफिक मिलेगा। दिस ऑल्सो हैवी ट्रैफिक नियर बर्षा 1 गोइंग टू विच बर्षा हाइट्स, ऑल द वे मीडिया सिटी से मरीना 15 to 18 मिनट डिले। ट्रैफिक नियर फुरजान एट द मोमेंट, डिस्कवरी गार्डन से इफ यू गोइंग टू विच फुरजान इज काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल। एनीथिंग एल्स you'd like to report, मुझे बताइए 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
7: प्रेम भाई, अरे गिरा तो।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Mansi on 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, have big thrill. Mansi, while you're in the traffic jam, we jam here with the karaoke. Joining us is Puneet. Hi, Puneet.
2: Hi, Mansi.
1: कैसे हो? कैसा रहा दिन?
2: बिल्कुल बढ़िया, अच्छा रहा दिन. और भी अच्छा हो गया आपसे बात करके.
1: हाय, मैं चाह रही थी कि ये बोलो आप. वैसे मैं बहुत सुंदर लग रही थी अपने गणपति सेलिब्रेशन में. सच्ची में लग रही थी, इसमें असली की बात नहीं है. आपको डाउट है मेरी ब्यूटी पर?
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं.
1: फिलहाल गए आप कहीं किसी के घर या आपने अपने घर रखे हैं गणपति?
2: जी जी, हमने अपने घर रखे हैं.
1: वेरी नाइस.
2: घर भी गए हैं.
1: तो कितने दिन के रखे हैं? डेढ़ दिन के या फिर पांच दिन के?
2: नहीं नहीं, फुल 10 days.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आज क्या बन रहा है प्रसाद में?
2: प्रसाद में अभी जाके पता लगेगा घर पे क्या बन रहा है.
1: आई थिंक दैट इज वन थिंग अबाउट फेस्टिवल्स आई लव ना, हर शाम कुछ ना कुछ सुबह शाम बनता है.
2: हर शाम क्यूरियोसिटी रहती है क्या बन रहा है.
1: आई नो. एंड जब घर में फेस्टिवल होता है तो फिर घिया तोरी भी नहीं बनती है. दैट इज अ प्लस पॉइंट. फिलहाल पुनीत, आप गाना गाने का शौक रखते हैं, आई एम श्योर रखते ही होंगे.
2: हाँ, थोड़ा बहुत.
1: तो किसी ने कहा है पुनीत कितना अच्छा गाते हो, बस गाते रहो और मैं सुनती रहूं?
2: नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा.
1: अरे मतलब चलो आज देखते हैं ऐसा कुछ माहौल बन पाता है कि नहीं. फिलहाल गाना मेरा बहुत फेवरेट है, आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द एल्बम मैंने प्यार किया. तो अब सुनेंगे आज शाम पुनीत की आवाज में.
2: Karaoke.

0: मौसम दोस्ती का।
1: वापनी मजा आ गया, मतलब आज तो माहौल बना है। ओए होए, लव इट। ऐसा लग रहा था कि एसपी सर आपके अंदर आ गए थे, बहुत कमाल गाया है।
2: थैंक यू।
1: अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगी जेन ज़ीज़, अगर आप सुन रहे हो तो। इस मूवी ने बहुत सारे लोगों को एक सवाल दिया था कि क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की पुनीत सिर्फ दोस्त हो सकते हैं?
2: आंसर तो नहीं था उसका शुरू में भी और अभी भी नहीं है।
1: बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की सिर्फ दोस्त रह ही नहीं सकते हैं। फिलहाल पुनीत, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बहुत कमाल गाया, मजा आ गया यार।
2: थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग टू
1: यू टू। गणपति बप्पा मोरिया,
2: गणपति बप्पा मोरिया,
1: बाय
2: बाय बाय।
1: यही है कारियोकी, इतना अच्छा गाना है, अगर आप भी गाना चाहते हैं देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल।
3: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill, I'm Mansi and we are karaoke-ing. जब आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, हम यहाँ पे जाम करते हैं. आवाज आपकी, कॉन्सर्ट आपका, ऑडियंस मेरी. एंड फिलहाल ऑन द लाइंस वी गॉट उबैद, जो इस वक्त शारजा की ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं. मुझे पता है उबैद, लगता था कि शारजा इज अ बिग नो नो फॉर मी. मैं वहाँ कभी गाड़ी नहीं चला पाऊंगी, शारजा तक तो मैं पहुंची नहीं हूँ. आई गिव अप. बर्दबाए करामा साइड भी गाड़ी चलाना आसान नहीं है.
2: बिल्कुल सही बात है. मैं खुद न्यू ड्राइवर हूँ और अब ये बस
1: अरे ये तो हमारे बिरादरी वाले आ गए. न्यू ड्राइवर कितने महीने हुए?
2: मेरे 6 महीने हुए था.
1: मेरे भी 6 नहीं, मेरे 5 हो गए हैं. तुम शारजा में चला रहे हो यार, मतलब देन तो खिलाड़ी ड्राइवर हो.
2: लेकिन मैं अभी दुबई से आया हूँ, एक्चुअली इंटरव्यू देके आया हूँ, तो खत्म ही नहीं हो रहा सफर. मैं
1: आई विल गिव यू द क्रेडिट ऑफ टेकिंग दैट रिस्क. आई डोंट थिंक सो फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ मैं कभी शारजा जाने की हिम्मत कर पाऊंगी. मैं तो बर्दुबई में हो गया था मेरा सैटरडे को. मुझे लग रहा था हाय बस मुझे यहाँ से निकाल लो, अब मैं आपसे और कुछ और नहीं मांगने वाली हूँ. बहुत टफ है वहाँ गाड़ी चलाना.
2: बहुत टफ है, नो डाउट. और ये लेकिन आपको पक्का ड्राइवर मुझे लगता है सही बनाएगा मुझे और आपको दोनों.
1: मैं कच्ची ही ठीक हूँ सर, वरना वहाँ तो अलग ही पक्का ड्राइवर बनने के चक्कर में जो फाइन लग जाएंगे मेरे और जो हो सकता है मैं वो बयान नहीं कर सकती हूँ. फिलहाल आप शारजा तक ड्राइव कर रहे हो, आप मेरे लिए हीरो हो इस वक्त. गाना जो मैंने आपको सुनाया था आपने पहचान लिया है?
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
0: कारियोकी.
1: हाँ जी आपका दिल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बस बताइए. दिल की सुननी चाहिए. दिमाग वाले जो है वो बेचारे बस परेशान होते हैं और बाल सफेद हो जाते हैं, दिल की सुनने वाले खुश रहते हैं. सुनाओ.
2: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से भी हो जाए जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो.
1: ट्रैक कोई और था बट ये किसी और ट्रैक में है. ये किसके लिए गा रहे हो आप? मेरे लिए?
2: ये आपकी आवाज के लिए. आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है जब ट्रैफिक ज्यादा होती है.
1: मैं भी बुरी नहीं हूँ ऐसे. जब मिल बैठेंगे दो नए ड्राइवर तो फिर तो माहौल अलग ही बन जाएगा.
2: हाँ ड्राइविंग में कहता हूँ हमारी बन भी रही है साथ, वो सब कुछ सेम आ रहा है तो ड्राइविंग भी पक्की हो जाएगी.
1: हाँ ड्राइविंग भी पक्की हो जाएगी. और मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, फाइन भी बांट लेंगे आधे आधे खिर करके दोनों. बट थैंक यू सो मच बेथ फॉर द लवली गाना एंड ऑल द वेरी बेस्ट. मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी, आपको कोई फाइन ना लगे यही मेरी दुआ है.
2: फाइन तो नहीं लगा ना आपको भी?
1: कभी ना लगे, मेरे दुश्मनों को लगे. मैंने इतनी अच्छी दुआ दी है, क्यों पूछ रहे हो फाइन लगा के नहीं लगा?
2: आपके लिए फिर मजीद कंटिन्यू रखूं दुआ कि आपको भी ना लगे. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
1: मुझे भी. और हमेशा दिल की सुनना क्योंकि दिमाग की सुनने वालों के बाल सफेद हो जाते हैं. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय उबैद.
2: बाय.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 6:08।
2: Bollywood.

0: Introducing Alfred Coins, the new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: गुड इवनिंग, ये है बिग थ्रिल. मैं हूँ मानसी एंड चिल्ला चिल्ला के गला और खराब हो गया है. डॉक्टर ने बोला है वॉइस रेस्ट करने के लिए, बट इट्स द फेस्टिव सीजन. घर पे गणपति आए हैं तो बनता है. फिलहाल आ गए हैं कविश. हाय कविश.
3: हेलो मैम.
2: अरे सर, इतनी रिस्पेक्ट आपको भी. हेलो सर, कैसे हो आप?
3: बढ़िया बढ़िया.
2: करते क्या है कविश?
3: मैं इधर दुबई में काम करता हूँ.
2: बहुत बढ़िया. मैं भी इधर दुबई में काम करते हैं. मस्ती करने के मूड में हुआ. इट्स बप्पाज ईयर ना, तो वो वाइब अलग है. आप जा रहे हैं कहीं गणपति के दर्शन के लिए? आपके घर पे बैठे हैं
3: दोस्त लोग के घर पे.
2: वेरी नाइस. व्हाट डू यू लाइक मोर, मोदक या फिर लड्डू?
3: मोदक.
2: मोदक इट इज. टीम मोदक. कहाँ से आप कविश?
3: मैं पंजाब से.
2: ओए हुई, मैं भी. बहुत सिमिलैरिटीज हैं हम दोनों.
3: किधर से?
2: मैं हूँ फिरोजपुर से. तुसी कितों?
3: मैं जलंधरों.
2: We'll play this fun game. It's called the 5 second rule. आपको मिलेंगे 5 second. मैं आपको दूंगी कुछ categories. 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर. पंजाबी आ गए हुए.
3: पंजाबी आ गए.
4: Oh yeah.
2: तीन दिलजीत दोसांझ के गाने.
3: दिलजीत दोसांझ. भूल गए.
2: तीन चीजें जो दूध से बनती हैं.
3: दही बड़ा, कड़ी पकोड़ा और.
2: दूध से बनता है दही बड़ा और कड़ी पकोड़ा. पहले दही नहीं बनेगा.
3: खीर, खीर.
2: हो गया टाइम खत्म. फटाफट 5 सेकंड. ओ 5 सेकंड के अंदर वीरे, 5 सेकंड के अंदर. तीन ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलती हैं.
3: एयरपोर्ट पे
2: नहीं, ये हेल्प कौन कर रहा है?
5: मैंने 2 दिन पहले फोन किया था आपको मैडम.
3: इन्होंने भी कॉल किया था आपको.
2: तो ये भी हार गए थे इतना बुरा जैसे आप हार रहे हो? बहुत ही खराब खेला, बहुत ही खराब. बट बड़ा मजा आया आपसे बात करके भाई. जलंधर वाला बंदा आया है. सो एंजॉय योर मोदक, एंजॉय द फेस्टिव सीजन एंड अगली बार थोड़ी प्रैक्टिस करके, ठीक है?
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
2: हैव अ ग्रेट इवनिंग कविश. बाय. आपके दोस्त का नाम क्या है?
3: दीपक
2: एंड कविश. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय
3: बाय बाय.
2: ये 5 सेकंड रूल, एक ही रूल है इसे खेलने का. मुझे कॉल करना है 800-1062.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
1: गुड इवनिंग, ये है बिग थ्रू लमानसी। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मुझे हर दूसरा कॉल जो है वो स्पैम आता है। वैसे हार्डली मुझे कोई कॉल करता है क्योंकि चैट जीपीटी जब से जिंदगी में आया लोग नहीं बचे हैं, बट मुझे सिर्फ स्पैम्स आते हैं। वैसे आपको अगर कुछ 20-25 मिनट में कॉल आता है, दैट्स नॉट अ स्पैम। फोन के पास रहना, कॉल उठा लेना।
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: It's time to travel and that too absolutely free. We're taking you to Germany. It's time to check in. And agar aapne abhi tak register nahi kiya hai, do it right now. बिग चेक इन, अपना नाम व्हाट्सएप करना है 0543091062 पे। ऑलरेडी कर दिया है तो फोन को अपने पास रखें, दिल की धड़कने संभाल के अपने दिल को काबू में रखें, अपनी जर्मन नॉलेज जो है चेक करने की तैयारी कर लो। आई विल बी आस्किंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस, कुड बी रिलेटेड टू द कल्चर इन जर्मनी, कुड बी रिलेटेड टू द फूड देयर, कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग व्हेन आई टॉक अबाउट जर्मनी। तो अगर आपकी जीके जर्मन नॉलेज ठीक ठाक है तो बस ये बहुत ईजी होने वाला है, वरना गूगल तो है ही। सो यस, अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आज शाम शॉर्टलिस्ट होने का मौका है, बट फॉर दैट यू हैव टू सेंड अस अ व्हाट्सएप। यहां पे नंबर नहीं लग पा रहा है, लॉट ऑफ पीपल कीप मैसेजिंग अस दैट आई हैव बीन ट्राइंग फॉर अ व्हाइल। देन देयर इज अनदर मौका फॉर यू टू ट्रैवल विद टीम बिग थ्रू इंस्टाग्राम, एंड फॉर दैट ए यू नीड टू शो अस सम लव, फॉलो अस 106.2 बिग एफएम इट इज, एंड देन वहां जाके देयर इज अ रील, उस पे सिर्फ एक कमेंट करना है दैट आई एम रेडी फॉर द चेक इन।
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड,
2: क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
3: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill Mansi. And one thing that I absolutely love about us Desis is कि दुनिया के किसी भी कोने का खाना आप ले आओ इंडिया में एंड हम उसे देसीफाई कर देते हैं. अब माचा की बारी है. इस फेस्टिव सीजन में, इस गणपति चतुर्थी में भाई इंडिया में माचा मोदक एंड माचा लड्डू, साथ में माचा बर्फियां मिल रही हैं. इतना ही नहीं, देयर इज अ पंडाल विच इज गोइंग वायरल, जिसमें बप्पा के एक हाथ में है मोदक एंड दूसरे हाथ में है माचा. ऐसे लोगों को ना दिल करता है कि माचा से ही जो राइम करता है वो लगा दूं. आई एम नॉट अ माचा पर्सन और द जेन ज़ीज़ कॉल इट, आई एम नॉट अ माचा गर्ली. आई हैव नेवर ट्राइड वन एंड आई डोंट विश टू. समथिंग दैट लुक्स लाइक ग्रास एंड इज सो एक्सपेंसिव, आई डोंट थिंक सो इज वर्थ माय मनी एंड वर्थ माय पैलेट. बट वन थिंग दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ कि इंडिया में आप कोई भी कंट्री की किसी भी कोने की डिश ले आओ, हम उसे देसीफाई कर देते हैं. एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी वेरी गुड एट. तो यार लोग आजकल एंजॉय कर रहे हैं माचा मोदक्स एंड ऑफकोर्स माचा लड्डूज. बट आई ऑल्सो फील के हम देसियों की लव लैंग्वेज खाना खिलाना होता है. द वे वी लव फीडिंग पीपल एंड आई थिंक आई हैव बिकम वन ऑफ देम. फॉर मी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव दैट आई कैन शो टू समवन दैट आई एब्सोल्युटली केयर एंड अडोर इज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी. एंड पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारा खाना बनाया है. तो मुझे ऐसा लगता है स्पेशली व्हेन यू स्टेइंग आउट ऑफ योर कंट्री, इवन इफ यू आर स्टेइंग इन योर कंट्री, किसी के लिए वक्त निकाल के खाना बनाना व्हेन यू आर अराउंड सो मेनी कूल डिलीवरी एप्स एंड ऑफर्स, आई थिंक इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. तो अगर कोई आपको खाना बना के खिला रहा है, कीप दोस फ्रेंड्स दोस पीपल क्लोज टू यू.
2: आसमान में उड़ान है, धड़कन धड़कन सुरूर में.
1: अभी इतने बड़ा जो मैंने लाइन मारी है ना, इसलिए कि मेरे दो चार दोस्त सुन रहे हैं, उन्होंने ये पता होना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत से उनके लिए खाना बनाया. सो दे शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. खाने से याद आया, हम देसियों की एक और आदत होती है, दो दिन बाद इन अ न्यू कंट्री वी स्टार्ट मिसिंग देसी खाना. तो आप अगर मैसेज कर चुके हो फॉर द चेक इन, तो थेपले बनाने की तैयारी कर लो. क्या पता कुछ देर में मेरा कॉल आए और आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: Bollywood.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: School's starting soon and we need a car.
5: And books, uniforms, everything.
4: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
7: Creditmarket.ae. You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Still slow moving traffic is वक्त अगर आप शिकायत पे हैं, not एक घंटे का delay but a 37 minute delay. There's heavy traffic. अगर आप Sufu के आसपास हैं, going towards Media City Marina all the way towards JLT, looks a bit patchy. Traffic from Discovery Gardens to Furjan, 12 से 18 minute का slow moving traffic आपको मिलेगा. There is traffic still if you're taking the Hesse Street heading towards Motor City. शेख मोहम्मद बिन जायद पर मर्डिफ टू मुहेसना ट्रैफिक जो है वो बेटर है, बट उससे पहले अगर आप इंटरनेशनल सिटी से वर्का जा रहे हैं आपको ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूविंग मिलेगा. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-10624.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Exactly, we're taking you to Germany this year and it's time to check in. Agar aap bhi hamare saath travel karna chahte hain, uske liye सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन अपना नाम 0543091062 पर. फिलहाल रैंडमाइजर ने ढूंढ निकाला है धवल को. हाय धवल.
2: हाय मानसी.
1: ये इतने मैसेजेस कभी किसी महिला मित्र को किए हैं जितने चेक इन के लिए कर दिए?
2: सिर्फ अपनी वाइफ को किए हैं जिसका नाम भी मानसी है.
1: देखो बट अलग अलग है हम दोनों.
2: बहुत अलग है.
1: भावनाओं में मत बह जाना धवल, जर्मनी अगर गए तो.
2: बिल्कुल नहीं.
1: फिलहाल ये जो दिल बनाया हुआ है ये डीपी पर, ऑफ कोर्स वाइफ के लिए होगा ना. धवल अपनी डीपी में साइड में किसी को देख रहे हैं और नीचे दिल बना हुआ है.
2: बस मैं उनको ही देखता हूँ दिन रात सुबह शाम. इट्स ओनली हर, नो वन एल्स.
1: वेरी नाइस. विल शी लेट यू गो अलोन टू जर्मनी?
2: ऑप्शन है तो क्यों नहीं, एक सोलो ट्रिप हो जाएगा तो अच्छा होगा.
1: जितनी भी मोहब्बत कर लो अपने मियाँ से, अपनी बीवी से, सोलो ट्रिप की ख्वाहिश हर शादीशुदा बंदा करता ही है.
2: Yes,
1: a successful शादी depends on how many solo trips your partner takes a year. That's absolutely true. फिलहाल मुझे एक बात बताओ धवल, गए हो जर्मनी आज से पहले?
2: नहीं, जर्मनी नहीं गया हूँ, बस एक बाजू वाली कंट्री में गया था, जॉर्जिया. बस
1: तो भाई जर्मनी घूमने का मौका आपको हम देंगे. वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे यू हैव अ चांस शॉर्टलिस्ट होने का. वी विल टेस्ट योर जीके, योर जर्मन नॉलेज. आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इफ यू मैनेज टू गिव मी द राइट आंसर, इजी, आई एम गोइंग टू पुट योर नेम इन द शॉर्टलिस्टेड लिस्ट एंड फाइनल लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस. फिलहाल तो शॉर्टलिस्ट होने का मौका मैं आपको दे रही हूँ. तो है जीके वीके अच्छा?
2: जीके नहीं, बट लेट्स ट्राई, लेट्स होप. अगर
1: आई लाइक पीपल हु आर ऑनेस्ट.
2: गणपति बापा ने चाहा तो हो जाएगा.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: All right, Dhaval, so your question is, which famous German mountain range is known for scenic hikes and a lot of winter sports in the south? Teen options bhi de rahi hun, ghabrana mat. Number one hai the Bavarian Alps, number two the Rockies, and number three is the Himalayas.
2: This is aapne fir se naam repeat karenge zara?
1: The Bavarian Alps, the Rockies, or the Himalayas?
2: The Alps.
1: Are you sure?
2: Yes, 100% sure.
1: ChatGPT se pucha hai na ye?
2: नहीं नहीं, अब तक तो नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऑन द वे घर जा रहा हूँ.
1: बिल्कुल सही जवाब, आप हो गए शॉर्टलिस्ट धवल. फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली अगला कॉल वो आए तो वो यही हो कि धवल सांस ले लो खुली हवाओं में, सोलो ट्रिप का मौका आ गया है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड.
2: थैंक यू मानसी, थैंक यू वेरी मच.
1: यू मोस्ट वेलकम, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय
2: बाय बाय.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: स्लो मूविंग स्टिल इफ यू इन द शेख मोहम्मद बिन जायद, बहुत ही स्लो मूविंग है इंटरनेशनल सिटी से इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स वर्का, स्टिल अ 32 मिनट डिले. देयर इज आल्सो पैची ट्रैफिक इन शेख जायद, नॉट रियली बैड, बट 27 टू अ 30 मिनट डिले स्पेशली अराउंड DIFC. थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको स्टिल मिलेगा अगर आप मरीना से जा रहे हैं टूवर्ड्स JLT. आई डोंट नो, आज उस रूट पे हल्का सा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है. देयर स्टिल ट्रैफिक इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स फुरजान, 12 से 18 मिनट का डिले. हैवी ट्रैफिक दो नियर मोटर सिटी एंड देयर इज स्लो मूविंग ट्रैफिक एट द मोमेंट अगर आप अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यू नो, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि घूमते फिरते रहना चाहिए क्योंकि एक जगह ठहरा हुआ पानी भी साफ नहीं रहता है।
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: And if you're wondering ki ye kaun hai Gyani, to maine Diljit ki reel mein ye dekha hai. But the point is, हवा पानी बदलने से ना माहौल बदलने से वाइब चेंज हो जाती है एंड व्हेन यू कम बैक द एनर्जी इज डिफरेंट। द बेस्ट पार्ट इज कि घूमने फिरने का मौका मिल रहा है आपको, वो भी ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप। वी फ्लाइंग यू टू जर्मनी, आपने अभी अभी सुना, धवल हो गया है शॉर्टलिस्ट, यू कुड बी नेक्स्ट। एंड फॉर दैट यू नीड टू सेंड अस अ व्हाट्सएप 0543091062 पर। अगर यहाँ नंबर नहीं लग पा रहा है, बहुत सारे व्हाट्सएप कर दिए हैं, देन एक और तरीका है, जस्ट हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज व्हिच इज 106.2 बिग एफएम एंड देयर इज अ रील देयर। नीचे कमेंट करना आई एम रेडी, वहां भी आपको रेडीमेड मौका मिल रहा है टू फ्लाई विद अस। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन एंड यूरोप में विंटर्स स्पेशली अराउंड क्रिसमस माहौल ही कुछ और होता है। जर्मनी इज अ पार्ट ऑफ माई बकेट लिस्ट बिकॉज आई ग्रू अप वॉचिंग अ लॉट ऑफ फेरी टेल्स एंड ऑल द कासल्स, स्पेशली डिज्नी कासल्स जो हमने देखे हैं मूवीज में, डिज्नी के कार्टून्स में, सब इंस्पायर्ड हैं जर्मनी से। सो या कांट वेट। वैसे इफ यू वांट एक्सप्लोर ऑल दिस एंड एक्सपीरियंस एक ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप, फटाफट से व्हाट्सएप करो।
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is still 35, low jayega around 31, but humid hai kafi outside at 67% per humidity.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill Mansi, and there's some kind of flu in the air. A lot of people, including myself, have been coughing like how it's been 4 weeks, but har dusra banda jo hai, mujhe yahi problem ke saath mil raha hai ke bahut khansi ho rahi hai, bukhar aata hai, khansi ho rahi hai. So yeah, please be very very mindful and careful. If you're traveling, take the flu vaccine to be safe. And school, agar aapke bachche jaate hain, to please unko bhi वैक्सीन आप पहले ही लगा लीजिए, क्योंकि किड्स आर मोर प्रोन टू दीज फ्लू इन्फेक्शंस. एंड जब वो घर पे आता है तो सबको लगता है मुझे नहीं पता ऑफिस में किसने मुझे ये इन्फेक्शन लगाया, बट इट्स रियली बैड, दिस कॉफ इज रियली बैड. सो आई हैव शोन टू द डॉक्टर, आई एम टेकिंग मेड्स, बट देर इज वन घरेलू नुस्खा दैट इज एब्सोल्युटली वर्किंग वंडर्स, एंड ये मेरी मम्मी का नुस्खा है. तो अदरक में शहद, काली मिर्च, कच्ची हल्दी एंड गुड़ मिला के पकाओ, और सारा दिन जस्ट यू नो लाइक दोज कैंडीज आप chew kar sakte ho to chew karo, but otherwise it's very good to just keep it and get the juices out, because people who've got this flu, they understand this cough is deadly. Raaton ki neende uda rakhi hai is cough ne.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से वुलू वुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: डर ही नहीं, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: फिलहाल मेरे जाने का टाइम, मैं आपसे मिलूंगी कल। ऑलमोस्ट प्रीकेंड है, फेस्टिव सीजन है, एंड देयर सो मच दैट्स हैपनिंग, फ्रॉम गणपति टू ऑफ कोर्स प्रेपिंग अप फॉर नवरात्रि, फॉर दिवाली। देयर सो मच दैट आई एम श्योर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। I look forward to meeting people, I look forward to celebrating people, but there's one thing that I can't do is going out on a weekday. Matlab ek zamana tha jab hum bhi university mein the, I used to party the whole night, go to university, get my errands done and main ek side mein job bhi karti thi aur uske baad phir raat ko party kar sakti thi, but wo hamare और पार्टी के इश्क का एक अलग दौर था। अब ना वीकडे पे कोई मुझे बोलता है आफ्टर वर्क कहीं जाने के लिए, आई जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग कि वो प्लान वीकेंड तक शिफ्ट हो जाए। तो या ऐसे ही कुछ होने वाला है, लेट्स सी कि वो प्लान मेरे प्लान के हिसाब से शिफ्ट होता है कि नहीं। फिलहाल अगर आपका प्लान है जर्मनी जाने का, उसके लिए यू हैव टू गो एंड चेक अस आउट इन सोशल्स, 106.2 बिग एफएम इट इज, एंड आई एम मानसी टॉकिंग। तो मुझे भी बताओ कि क्या मेरी तरह हो कि अगर वीकडे पर अगले दिन वर्किंग डे हो, कोई आपको बोलता है यहाँ चलते हैं, देयर इज अ पार्टी, देयर इज दिस, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू सी मी, डू यू लुक फॉर रीजंस कि वो पार्टी पोस्टपोन होकर वीकेंड तक पहुंच जाए या कैंसिल हो जाए? डेफिनेटली लेट मी नो मेरे डीएम्स पे। मैं आपसे मिलती हूँ कल, लीविंग यू विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक। गुड नाइट।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 아니 마트 오시게 자 문제도 너의 기제 데리오
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ
5: हाय इशिता
6: हाय मानसी
5: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या रुको हाउ आर यू बाद में करेंगे आई यू एट डिज्नीलैंड
6: पेरिस
5: एक का ट्रिप लेगी अब जर्मनी का भी लेगी है
6: हाँ
5: क्या करते हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा
6: आई एम अ होममेकर फुल टाइम
5: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे बहुत क्यूट है
6: थैंक यू सो मच
5: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका पापा के साथ रहेंगे
6: दोनों बालिका है
5: अच्छा रहेंगे पापा के साथ
6: यस यस
5: वेरी नाइस बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है ऑल द बेस्ट आपका सवाल है विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट
6: The second option, Brandenburg Gate.
5: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
6: Golden Gate, India में ही है.
5: हैं?
6: शायद.
5: ये बहुत ज़्यादा.
6: But second option ही है.
5: विदेश यात्रा कर रही Golden Gate जो है वो इंडिया में है. आपके घर का गेट तो नहीं है?
6: नहीं.
5: आप हो गई है shortlist.
6: Thank you so much.
5: Congratulations. You're one step away for this check into Germany. Okay.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.